0: जी उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतज़ार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो।
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
0: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है। फिर मैं एक दफ़ा फिर से मेरा जुनून ताज़ा हुआ, फिर से मैंने इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत तरीके से एक्सपोज करना शुरू किया।
1: Find out about Ali's story. Info Migrants, reliable news for migrants, wherever they may be. Art against all odds. Why Paris's massive new rapping project almost didn't happen. Straight out of a movie, the absolute must-sees in medieval York. And the ultimate pasta secrets, where real ravioli comes from and how to make it like a pro. These stories and more coming up on Euromax.

0: गिरोगे भी आएंगे मगर ये थे
1: अरे दे माता कंडा मत फगा हर मकर भी आपन फगा तो कंडा भी फगा
0: बकरे लड़की बिरी रही।

0: fighting anything.
1: खाना है तो खाना है
0: मर
1: नपुर हाँ तो नहीं तो आ जाए तो पंजा लेंगे खाने नहीं दी तो कोई मौरी लग नहीं अरे कसम

इतिहास प्रमाणे कच्छ जो करो है मालधारी वतन, वो खीड़ू है बई थी भी उद्योग रोगा जो जमीनों जिना है रही है माल बेचारो भी नहीं किना।

0: ஆ கேர் பா பண்ட
1: பட்டல் பட்டல்
0: பட்டல் வரம் சாய் பா பிந்தா
1: மால் கட்ட ரக்கி
0: கொரு கொரு மால் போத்ரே பாய் ஜுவே ஜீ ஆஜி ஜமீன் கி ஹே ஜே डुकार और बापा ये वाड़ी में ही कदा वाड़ थी कदा की थी तदे डी वलाई थी बाहर जंगल में नकरे एकड़ी की भाजी बने थी नती की खाते जो मिले
1: घटी बंद के जड़ी का वस्तु जे तदे जड़ जड़ बड़ा
2: कितने हांटी है बच्चा
0: से आगे 70 कन जेवा है
2: आतले है ही
0: हो
2: तो लगता ना थी तेवड़ा से
1: वो तो अलग अलग धन भरो ना आले
0: ये तुम्हारी
2: નથી
0: જતો
2: બાપા ને ઘોડે ઊંટ ચરાવવા પડે.

0: पेट पण धणी वेचारा मेहनत करी था नैन में धणी वटे असां एवर ऐं मंझंदा आहिनि वरे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई आहिनि माल जी छा त माल जी ॾिसो त ई परिस्थिती
1: हनी लाखोरी काथे रही वई न लाखोरी हनी हाणे वीचार आहिनि वेसां पई खणी हिन घेटनि वॾा मनू में वे कसल त कड़ो हज़र वातारे में निकिरो त हाणे
0: अड़ी तपावा तूं कड़ो कड़ो मत ऑइल जो दवा जो अची वञे न

आई पिंड उठन जाए का कक थो आई के घोरा ते ने मने अठो अधी करे वराय दे गा में पण वरी पण ये लगे तो ये सफा वराय छडन दा तेन पो कोंडा एतरो मारो हजार 13000 महीने में कथा न करना पण वाला

कि असी जडा पण वणो ता ओडा असा के मालदारी चें ता मिठा कि असी जडा पण वणो ता ओडा असा के मालदारी चें ता मिठा या असी कच्छ मुल्क जा मोजीला मालदारी आयु मिठा या असी कच्छ मुल्क जा मोजीला मालदारी आयु मिठा।

0: वालेकुम सलाम। ठीक है? मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ यानी बने टाइम जुड़े तो ना बने आला ही
1: ना।
0: हाँ टाइम जुड़े ना तो जब लें जो कम मत हुई जी समझी कर पुता की रे पुरात जो चनी तो ही तो पैर आचे होने में सुनो रही यार ना।
1: क्या आया क्या?
0: ठीक है ठीक बस प्या हाल है हमारे भान जी तो आए।
1: दो आला ने मैटर जिया
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: जरा वाली बयान कर दे।
0: अगर शायरी कैडी बनानी तो कोई वफा जी को बेवफाई जी को शाड़ी बनानी
1: बेवफाई शायरी
0: बेवफाई जी
1: आओ
0: बस तो के गायल करे भाई।
1: हो
0: हां
1: क्या तो धंधा करो करो जरा
0: धंधा उठा गाड़ी आला ही तो रहती मेरा कहीं यहाँ जर तो सजे समझे नौ वर्ष बीत गए हैं खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा कर याला ही मेरे थी मांडा मांडा को लोक नहीं जरे
1: तो गाड़ी दादी भी गाड़ी में लगी हुई है तो गाड़ी दादी भी गाड़ी ले गाड़ी में लगी हुई है तो
0: ना रे गाड़ी ने जंजीर का नहीं उठा गाड़ी बरोबर आने तेरे थी मेला है पे गाड़ी में खटा रहा मुकाद धक्का चले जा।
1: यही बात ना किया है
0: इनका बड़े साधु ने सीधा ये धंधा बरोबर नहीं बने कौन टोला था जो तो मात तारे दे पे हो जाए टुकड़ो बेड़ो तो जाए
1: तो दिखा रे रेती भी भरा था ना जड़ी ने कोई पैरा तो करूँगा ना।
0: हाँ अंदर

0: यूट्यूब पे
1: ठीक
0: लाइक
1: यार, ये तो यार हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो, फॉलोअप करो ने चाहे सहयोगी करो ना बराबर। तो हो जो फोटो डाला है, फोटो डाला टाइम जोड़े तो ना बना आला से।

0: ahora me llega. ¿Qué
1: onda? ¿Quieres la guía?
2: ¿Gati, gati, qué tienes? ¿Nada?
3: ¿Sabes gati o no? ¿Gati, gati?
4: ¿Ana va a dar nada?
3: ¿Sabes gati o no? ¿Qué caro no vale? ¿Qué haces la guía aquí?
4: ये तो ना का उठी थी ऐड होना थी जो मेहनत ना थी कि राशि कारण ना थे वो कहीं नहीं दावा ना थी जाम थी
3: ऐड में पंच खाली रखे हुए फिर तो समझ के नो
4: सी आई पंच आई
3: मतलब तेरे में पंच थे भी नहीं थी नहीं
4: थी नहीं कदरत जोड़ा है
3: तुम्हें क्या रखे
4: हैं जोड़ा ही पंच वसन भाभी रही हैं
3: मनी वाले बबक उधर क्यों नहीं करना का भाई वाला
4: ना
3: कॉक
4: सीधे
3: रिबारी करेगा ना है
4: रिबारी इंची हूँ हाँ पांच जो मन टूटी हो वस्तु इतनी निगरा नुकसान था ही नहीं को इनके नया राज्य ये आने पांच बार सही में ही नहीं
3: हाँ
4: कोतर तो नींद ही थे नहीं मिला बात
3: नहीं मज़े थे जो दागल सच्ची है
4: बाकी पहला वाले जो है ना धुआँडी धन फेरा नहीं
3: आज
4: चाना सोतरी भी मान
3: पर नहीं लगभग वरी है चिंता बासामंद भी उठी में मुठी में बरकत थी नहीं नेर जा
0: बरकत नींद ही कोतर तो पाँ पानी ना है ना
3: नहीं अल्लाह तो भरोसा रखो
0: ना भरोसा अंत है जा अल्लाह वगैरह के बीच जो आ रहा
3: था ना आ रहा नहीं
0: वो खापे में ढाका ये लेना
3: गाय जबान ही वहाँ के ना मतलब सामने दिखे तो ये कोला बब गन्नी गन्नी पर पास ही दिखे क्या आज भाई होना चिंदो
0: ही होना चाहिए आज जलने चाहिए मानने चाहिए तो पूरे नुकसान वाली वस्तु है ना इनके ता बाढ़ दो है इनके सामु फोको वाली होता से आदि वो बोला वो बकरी दे नहीं उठी गेड़ी
3: परिपाटी
0: मारा ही उनसे ने पासी गड़ा ही होनी में मरे सरखी थे ही
3: तो आई समझिए ना कि मन में आड़ो ये तो आंके थे ही हुए जे मतलब ये उठी थे आज जो समझिए कि लेना देने
0: उची थे ही
3: बराबर ने
0: मतलब यही जी तो
3: नुकसान पे नुकसान ही
5: हाँ
0: भविष्य में नहीं चौधरी ये तो मॉल में चल रहा है वहाँ के जो कुदरत जितना रोजी लिखल हुए उनके पास अपना ही तड़े नहीं पाते उनमें भाग भरे

0: कीड़े भी आएंगे मगर ये थे
1: दे मथा कंडा म फगा हन मकर भी अपन थिया तो कंडा भी फगा
0: बकरे बकरे बकरे

0: I'm finding it.
1: खाना है तो खाना है
0: मर
1: नपुर हाँ तो नहीं तो आ जाए तो पंजा लेंगे खाने नहीं दी तो कोई मौरी लग नहीं अरे कसम

इतिहास प्रमाणे कच्छ जो करो है मालधारी वतन, वो खीड़ू है बई थी भी उद्योग रोगा जो जमीनों जिना है रही है माल बेचारो भी नहीं किना।

0: Segera.
1: Jarak dalam sadar emang.
2: Nah, sadar ya, emang orang pria.
1: Emang ada jago gitu.
3: खतरी हथ खा चक्कर
4: रब ने ही गांव कतरे ने मखिया

0: ஆ கேர் பா பண்ட
1: பட்டல் பட்டல்
0: பட்டல் வரம் சாய் பா பிந்தா
1: மால் கட்ட ரக்கி
0: கொரு கொரு மால் போத்ரே பாய் ஜுவே ஜீ ஆஜி ஜமீன் கி ஹே ஜே डुकार और बापा ये वाड़ी में ही कदा वाड़ थी कदा की थी तदे डी वलाई थी बाहर जंगल में नकरे एकड़ी एकड़ी भाजी वने थी नती की खाते जो मिले
1: घटी बंद के जड़ी का वस्तु जे तदे जड़ जड़ बड़ा
2: कितने हांडी है बच्चा
0: से हांडी 70 कन जेवा है
2: आतले है ही
0: हो
2: तो लगता ना थी तेवड़ा से
1: वो तो अलग अलग धन भरो ना आले
0: ये तुम्हारी

0: पेट पण धणी वेचारा मेहनत करी था नैन में धणी वटे असां एवर ऐं मंझंदा आहिनि वरे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई आहिनि माल जी छा त माल जी ॾिसो त ई पूरी सिधी
1: हनी लाखोरी काथे रही वई न लाखोरी हनी हाणे वीचार आहिनि वेसां पई खणी हिन घेटनि वॾा मनू में वे कसल त कड़ो हज़र वातारे में निकिरो त हाणे
0: अड़ी तपावा तूं कड़ो कड़ो मत ऑइल जो दवा जो अची वञे न

आई पिंड उठन जाए का कक थो आई के घोरा ते ने मने अठो अधी करे वराय दे गा में पण वरी पण ये लगे तो ये सफा वराय छडन दा तेन पो कोंडा एतरो मारो हजार 13000 महीने में कथा न करना पण वाला

0: वालेकुम सलाम। ठीक है? मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ यानी बने टाइम जुड़े थे तो ना बने आला ही
1: ना।
0: हाँ टाइम जुड़े ना था जब लें जो कम मत हुई जी समझी कर पुता की रे पुरात जो चनी तो ही तो पैर आचे होने में सुनो रही यार ना।
1: क्या है क्या?
0: ठीक है ठीक बस प्या हाल है हमारे भान जी तो आए।
1: दो आला ने मैटर यार
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: इधर वाली भी कर दे।
0: अगर शायरी कैडी बनानी तो कोई वफा जी को बेवफाई जी को शाड़ी बनानी
1: बेवफाई शायरी
0: बेवफाई जी
1: आओ
0: बस तो कब गायल करे भाई।
1: हो
0: हाँ
1: क्या तो कुछ धंधा करो करो जरा।
0: धंधा उठा कर डाला ही तो रहती मेरा कहीं आज जर तो सजे समझे नौ वर्ष बीत गए आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा कर डाला ही रहती मांडा मांडा को लोक नहीं जरे
1: तो गाड़ी दादी गाड़ी में लगी हुई तो
0: हैं
1: गाड़ी दादी गाड़ी में लगी हुई तो
0: ना रे गाड़ी ने झंझट के नहीं उठा गाड़ी बरोबर न तेरे ती मेला है पे गाड़ी में खटार में का धका चले जा।
1: यही बात है क्या यार।
0: इनका बड़े साधो ने सीधो ये धंधो बरोबर ना पण कोन तो लथे तो मार तारे दे पे हो जे टुकरो बेड़ो तो जे
1: सही बात है। रेती भी भरा तो ना जड़ी ने कोई पैरा तो करूंगा ना
0: हाँ अंदर इतने नए में भरे कर गोठम खाली करने का
1: बोटम खाली करनी कड़े पैसे तो उठाओ देन
0: कितने 100 रुपया कितने 150 कितने कड़ो 120 अट्री होगा। कायम ही 100 रुपये फैक्ट्री में भाग लोकल में समझी कर वजन 100 कड़ो 100 रुपये 4 कितने कड़ो 5 वजन
1: नोरे एक नठा हुआ
0: ने वरे कने मिठाओ को फरण कना लण कने का।
1: मैं YouTube पे तो कोई भी शायरी बनाई और गाटा गाटा कोई हलाई है YouTube पे शायरी तो जिन कुल के मां पसंद क्यों आन लाइक किया बोला
0: ठीक यार ये तो यार बार
1: ये मैं आप बार को ना इन तो शायरी लेके दादा मुरंगा
0: ओ गड़ो है मैं हाय वो जिंगा जी हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलो करो ने चाहे सजो की करो ना बरोबर तो हो जो फोटो डाला है टाइम जुड़े तो ना बना हाला सेटिंग।

0: शरीर घटी हुआ जो गत घटी हुए
1: हाँ वादा न दे
0: शरीर घटी हुए जो कारण बोला व्याधि लगी है कि
1: ना उठी थी एडो न थे मेहनत न थी कि राशि कारण न थे कि दवा न थी जान थी
0: हेड़ भाई पंज खाली रखे होन फेर समझ के नो
1: सी आई पंज आई
0: मतलब ते में पंज थी वेंदी पछ नहीं थी
1: थी कुदरत जोड़ा है
0: तुम के बेकार रखे
1: उड़ा आई पंज हसन बा भी
0: मणि वटा बबो उधर गनी करो ना का भाई वटा
1: ना
0: को
1: से तो
0: रिबारी करे गनो है
1: रिबारी छे
0: हां
1: पांच मन टटियो वस्तु इतनी निगार नुकसान थई नी कोन के नेरा जे ई आने पांच बचई नी ना
0: हां
1: कुदरत दीदी ते एनी में जवाब
0: एनी में थई जो कल सच्ची है
1: बाकी पहला वाडे जो ना दुवाड़ी धन फेरा नहीं आज चाने से उतरी हुई मान
0: पण आई लगो वरी अच दवा सामन भाई उठी में उठी में बरकत थी दी नेर जा
1: बरकत दी दी कुदरत ते पा पानी ना है ना
0: आई अल्लाह ते भरोसा रखो
1: ना ना भरोसा अंत जे
0: हैं
1: अल्लाह वगर के बीच जो
0: आ रहे ने
1: वो खापे ना ढाका येल ना
0: गाय रबारी वहां के ना मतलब सामने दिखे तो ये कोला बबो गनी गनी पास दे दे कहां जे भाई न चिंदो
1: हियो न चन आज जल न च मन न त तो पे नुकसान वाली वस्तु है ना इनके ता बार दो है इनके सामु फोको वाडियो ता से आडे वो बोला हैं वो बकरी दे ने उठी गेड़ी
0: परी बात
1: मारा यूं ते ने पासी गड़ाई होनी में मरे सरखी थी
0: तो आई समझ के मन में आड़ो एतरो आके थई हो जे मतलब ओठी ते आ जो समझ के लेने देने ओछी थई हुई
1: ओछी थई हुई
0: बराबर ने
1: मतलब इन जीत
2: गो बराबर जड़ी हो नदी के
0: नुकसान पे नुकसान ही
2: बराबर
0: हां
1: भविष्य में न चौधरी ये तो मल में चल रहा है पां के जो कुदरत जडा रोजी लिखल हुए उनके पां अपना ही तड़े पां के उनमें भाग भरे